सबते ऊचता की शोभा बनी नान ए गुण नाम सुखमनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद उतार खासे दस खतका पात शाही दसवीं अकाल पुरख की।

श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अकाल पुरख दीन का सत श्री अ

कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगा व्यापारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामनाधीन परो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीतकाल कुंचर ओगा दहा।

करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप कुरलाव है अल्लाह अफेक सोई पुराण यो कुरान होई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सब उड़ जाएंगे केते नब बीच अच पछ को करेंगे भज केते प्रत

दे जलीन ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहिंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित कऊतासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को बरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मडी मडली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पज हारे पंडित

रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखंगपेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद अद्वैयाविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे।

खंडत प्रतावाद अक्षय विभूते न जन्म न मरण न पर न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सो भूते भविके भवाने य चित्रे नारायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अपेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियच्छयाद अद्वया जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रताप अयुक्तंग क्षयाद अविक्त यथा विभुक्तंग क्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न वर्मंग न सर्मंग न साके न परमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के।

दानवी हूँ कहूँ जस विद्याधर मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राजकन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की दृष्ट पन्नया कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ शुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध से खं कहूँ ब्रह्म।

सदीव हर्ता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतपान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम बेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय याद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्यून अंग अच्छा स्वरूप अक्षय भंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कते, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतुल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत काम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तद पावत न पार, कई उर्ध पाह देशन भ्रमंत, कई उर्ध मद पावक जुलंत, कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद, कई गोक काव कथत कतेब, कई यगन होत्र कई बौनहार, कई गर्त कोट मृत को आहार, कई गर्त साक पै पत्र भच्छ, नहीं तदप देव होवत प्रतच्छ, कई गीत गान गंधरा बरीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, गहु वेद रीत जग याद करम, गहु अगन हो

कई तीर्थ तीर्थ परम सोभरम गई अग्नहोत्र कई देव करम गई करत वीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम गये सिमृत शास्त्र तुचरत सुकरम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई बजत एक पक निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब तास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदब दृश्य देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक ना

जय जंपो जो गण जो हजवंग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तप ताप सर्प जलेर थलंघन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड भूत छेद छयंगन काल अपाल दयाल सुवंग जे ठटियंग मेरा आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रचयंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भूक भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न माद पितं जे रचयं छत्री छत्रचितं जय राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पदाप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नकंस जज गंधर्प फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग।

किन्नर जा छजुआंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जा छबुजंग दिए गज बाजर थादिक पांत गणंग भव भूत भवेख भवान तुआंग जहे अंडज सेतज जे रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भो मेरा आकाश निवासी तंग रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जे पावक पौन प्रचंड मई जे खंड अखंड प्रचंड किए जे छत्र उपाय जपाय दिए जे लोक चतुर्दशार रचे नर गंधर्व देवा देव सच्चे अंधूता भूता छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेदा भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुगंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जे बंधत देव देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंग रचे मन माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपद भेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद रह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तप ताप करे नहीं नैक कृपानित पान पर जय फूकर धर्म सब तय एक चित कृपानित को जप

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास जीव सर्व सात है अनाथ नाद नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अचिंज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अदोग दाग दग है अभूत भ्रम फेक है न तात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेक शेक फेक है सदीव विश्वभरण है विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में अभिषेक अन्न मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बसावई पुराण यौ पुराण नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइय गंज आद देव है कहो सु कैस पाइय जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट है न घाट बाट होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यौ मकान।

अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के भूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा

गजाधपि नराधपि गरंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे विषेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिय अगाध आद जीव की अनाद बात मानिय न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिय सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में।

मित्र बालक शत्रु कालक दीन दयाल मुकंद अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के व्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भोगता सर्व जोगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम का जले थले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन।

चंडासुर चंडन मुंड मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण सुजा पुरंगण फणि पुंगारण ज्योत जिते सरदार विवरखण दुष्ट प्रकरखण।

अघोग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रभ मथे दाढ़ विप्रतंते जोग जयंते मनुज।

ताड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हो से मघासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट।

तेज प्रकार खंड तुंत तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्क तपत प्रतापन जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकार खण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर्कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंगे के हर लंके याद तंगे क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ जगरतन संभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज बिसूजन कौज

दन चंड चक्र दन आदि गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर वृते धूमराज विदुन सन प्रलय प्रजुन सन जग विदुन सन शुद्ध मते जाल बाजयंति शत्रु मथंति दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय उसी मै का सुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रिय खतंगीय भय भंगी आद अंगी अगाध गते विडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन विश्व विदुन संशिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे उदल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रदर खण बितल तले अष्टायत बाहन बोलने बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने याद अंते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायत चमकण सहस्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुक डुकी दमंगे बाघ बबंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण।

जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सजदा कराए। प्रभ एक रूप द्वै कह लखाए अंशिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्वै अनाश सब रोग सोग ते रहत रूप।

है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चिहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं करम काल सब जीव जिंदगी करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अन भिज दाग। जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उजरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुग दहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निस दिन उचरंत। त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नित संतु बार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको व्रत पारे। पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पद मापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराजक रोग रोहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देवा देव खपे अहंग मेव न भेव रखियो भ्रम से भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव सके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद से किन श्री पदमापत पाए। आद अनंत अगात दवेक्ष भूत भविख भवान भय है अंत विहीन अनातम आबादागा दुख छिद्र छह है। लोगन के करता हरता जल मै थल मै फरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे अच्छ है। जान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्रीपद मापत।

राखत है अपनो कर दे कर बाप संभूहन भेटन पावे। और की बात कहा कह तो सौ सौ पेट ही के पट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देव वेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूमा का अस्पताल रसातर जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रवाहू को नित ही नित भेद बतावे। खोज थके सब ही खुज या सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो। वेद कते वन वेद लगे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तय को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब बचहारे। भेद न पाए सके ओ न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। याद न तगाद बेगद वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर कर बेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्य के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूं के मान है। ज्ञान हूं के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय जावे गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी बचाने निज काम है। मरटा मंगिल तेरी मन सो तपस्या करे दीड़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेल माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस ने आवे तिब्बती।

चालू यहाँ बोल रहा है क्या? चालू है, चालू बोल रहा है, चालू बोल रहा है।

आद अनिल अनाद असंभ ताका मूल उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदास निरंकार का छीनत नह भव आप नी बुद है जेती बारंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखान जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतभुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तो मैं संभारा काल फांसते ताहि उबारा

कह चौपई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दऊ चल राख आप मुहे और ना दल तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा।

जोर करो। जब आओ की औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चा।

राख तर नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्रीयस पान

भेद प्रकरण जावे दोहरा ऐसे चन प्रताप ते जन प्रिय प्रताप तिन को जय जय करे रे नाम सजा दोहरा सकल द्वार को चाट के हर द्वार द्वार बहने वे का दास सुबिंदास द्वार दोहरा रात्रि का खालसा के रे ना कोई द्वार हो सब ने मचे सन जो होए गुटके सभा में शिकार गुड़ा पासार टंका बाजा फते का ने तुम करतार छत्र चक्रवर्ती जत चक्र भूते स्वयं बहु सुन सुदास जुगते दुकान पणा सिरे आलम स्वरूपे सांग संगया भंग विभूते देते को फतिन सर्वे दिया पुत्र आज नानक गुरु गोविंद सिंह जी का अर्जुन सहाय दरबार में तेरे दरबारा सचखंड से निकारा लक्ष्मी पति तुम्हारे दरबारा सदते नमस्कार दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पुनर अवतार जगन गोविंद विराज के सिया चंद्र अपार।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना के फ्रह चंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती।